बिजली घर इलेक्ट्रिक उरतिम कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 वर्षों में मंजरनामा बदल गया है। काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो गया है। 2016 में तुर्की में बिजली की पैदावार ज़्यादातर दरामद शुदा कुदरती गैस और कोयले पर मबनी थी। इस दौर में काबिले तजदीद तवानाई के ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की सालाना मकदार 86,500 गीगावाट घंटे रिकॉर्ड की गई थी। 2026 में ये मकदार तकरीबन सिर्फ पहले 5 माह में हासिल कर ली गई है। 2020 के बाद से शमसी और बाती तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की रफ्तार बढ़ने का भी इसमें अहम किरदार रहा है। 3 अहम अहदाफ मौसमियाती अहदाफ और 2053 नेट ज़ीरो अखराज विजन के मुताबिक तैयार किए गए तुर्की कौमी तवानाई मंसूबे से भी काबिले तजदीद तवानाई की अहमियत वाज़े होती है। एक्शन प्लान के मुताबिक 2035 तक काबिले तजदीद तवानाई के हवाले से 3 अहम अहदाफ ये हैं। हवा और शमसी तवानाई की मजमूई नसबशुदा सलाहियत को 120,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। बिजली की पैदावार में फोसल ईंधन यानी कोयला और कुदरती गैस का हिस्सा नुमाया तौर पर कम किया जाएगा। सूरज ग्रूप होने और हवा बंद होने की सूरत में काबिले तजदीद तवानाई की गैर मुसलसल नौयत को मुतवाज़ रखने के लिए 7.5 गीगावाट सलाहियत के बैटरी और तवानाई जखीरा करने के मराकज़ कायम किए जाएंगे।

सामिन आप हमें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से समाप्त फरमा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज उर्दू प्रोग्राम, वॉइस ऑफ तुर्की, पोस्ट बक्स नंबर 333, पोस्ट कोड नंबर 06443, यानी शहर अंकरा तुर्की। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@trt.net.tr और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rturdu.com। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।